0: सहावा गीत कवि डी एन मधोग, संगीतकार ज्ञान दत्त आणि गायक कुंदनलाल सैगल यांनी 1942 भक्त सूरदास चित्रपटासाठी निर्माण केला आहे। अभिनेते अन्नू कपूर यांनी गाण्या अगोदर के एल सैगल आणि पृथ्वीराज कपूर यांच्या मित्र प्रेमाची कथा आपल्या खास शैलीत सांगितली आहे। गाण्याचे शब्द आहेत मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। हा होता आजचा हमराज कार्यक्रम। नमस्कार, पुढच्या भागात अजून काही गीत आपल्याला भेटणार आहेत।
1: केएल सहगल और पृथ्वीराज कपूर के बीच कुछ समय तक बोलचाल बंद थी। तभी एक दिन पृथ्वीराज की माताजी ने सहगल से कुछ ऐसा कह दिया कि सहगल के दिल का दरिया छलक उठा। क्या था वो किस्सा बताऊंगा। बात तब की है जब केएल सहगल और पृथ्वीराज कपूर अपने परिवार सहित माटुंगा मुंबई की एक ही बिल्डिंग में रहते थे। दोनों में दोस्ती भी गहरी थी, लेकिन बकौल श्रीमती आशा सहगल दोनों के बीच किसी बात पर अनबन हो गई। बात यहां तक पहुंची कि आपस में बोलचाल भी बंद हो गई। अब इत्तफाकन एक दिन सहगल शूटिंग के लिए निकले तो थोड़ी देर में वापस सीढ़ियां चढ़ते हांफते वापस लौट आए और पत्नी आशा से बोले, मंदिर से आते ही मां यानी पृथ्वीराज की मां मिल गई थी। कह रही थी, कुंदन बहुत दिन हुए तूने कोई भजन नहीं सुनाया, बस इसलिए अपना हारमोनियम लेने आया हूं। और अगले ही पल हारमोनियम गले में बांधे वो सीढ़ियां नीचे उतर गए। फिर देखते क्या है कि वो खड़े खड़े ही पृथ्वीराज की माताजी को भजन सुना रहे हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर। सीढ़ियों पर ही माताजी को भजन सुना रहे हैं। उनका गाना शुरू हुआ था कि वहां न केवल पृथ्वीराज बल्कि और भी सुनने वालों का अच्छा खासा मजमा लग गया। भजन जब पूरा हुआ तो पृथ्वीराज ने लपक कर सहगल के गले से हारमोनियम उतारा और लिपट गए अपने भाई से, रोने लगे। कैसा भावुक दृश्य रहा होगा आप इसका अंदाजा लगा सके तो लगा लीजिए। मैल मलिन सब धोए दियो, लिपटाए गले से सखा को सखा ने।

0: से ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: सहावं गीत कवि डी एन मधोग, संगीतकार ज्ञान दत्त आणि गायक कुंदनलाल सैगल यांनी 1942 भक्त सूरदास चित्रपटासाठी निर्माण केला आहे। अभिनेते अन्नू कपूर यांनी गाण्या अगोदर के एल सैगल आणि पृथ्वीराज कपूर यांच्या मित्र प्रेमाची कथा आपल्या खास शैलीत सांगितली आहे। गाण्याचे शब्द आहेत मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। हा होता आजचा हमराज कार्यक्रम। नमस्कार, पुढच्या भागात अजून काही गीतं आपल्याला भेटणार आहेत।
1: के एल सहगल और पृथ्वीराज कपूर के बीच कुछ समय तक बोलचाल बंद थी। तभी एक दिन पृथ्वीराज की माता जी ने सहगल से कुछ ऐसा कह दिया कि सहगल के दिल का दरिया छलक उठा। क्या था वो किस्सा बताऊंगा। बात तब की है जब के एल सहगल और पृथ्वीराज कपूर अपने परिवार सहित माटुंगा मुंबई की एक ही बिल्डिंग में रहते थे। दोनों में दोस्ती भी गहरी थी, लेकिन बकौल श्रीमती आशा सहगल दोनों के बीच किसी बात पर अनबन हो गई। बात यहां तक पहुंची कि आपस में बोलचाल भी बंद हो गई। अब इत्तफाकन एक दिन सहगल शूटिंग के लिए निकले तो थोड़ी देर में वापस सीढ़ियां चढ़ते हांफते वापस लौट आए और पत्नी आशा से बोले, मंदिर से आते हुए मां यानी पृथ्वीराज की मां मिल गई थी। कह रही थी, कुंदन बहुत दिन हुए तूने कोई भजन नहीं सुनाया, बस इसलिए अपना हारमोनियम लेने आया हूं। और अगले ही पल हारमोनियम गले में बांधे वो सीढ़ियां नीचे उतर गए। फिर देखते क्या है कि वो खड़े खड़े ही पृथ्वीराज की माताजी को भजन सुना रहे हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर। सीढ़ियों पर ही माताजी को भजन सुना रहे हैं। उनका गाना शुरू हुआ था कि वहां न केवल पृथ्वीराज बल्कि और भी सुनने वालों का अच्छा खासा मजमा लग गया। भजन जब पूरा हुआ तो पृथ्वीराज ने लपक कर सहगल के गले से हारमोनियम उतारा और लिपट गए अपने भाई से, रोने लगे। कैसा भावुक दृश्य रहा होगा आप इसका अंदाजा लगा सके तो लगा लीजिए। मैल मलिन सब धोए दियो, लिपटाए गले से सखा को सखा ने।

मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।